आकाशवाणी एफएम बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से समां इस वेले 5:59 दा ठीक 6 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन ते 6:05 ते अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों।

0: मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। उसको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ETF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी

ठीक 6:15 ते तुसी सर्वन करोंगे प्रोग्राम अमृत वेला। 7 दा समा रहेगा प्रोग्राम सजरी सवेर दा। अज दा सिलसिला होएगा मॉर्निंग क्विज। 8 हिंदी विच खबरां ते 8:15 ते अंग्रेजी विच खबरां आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों तुसी सुनोगे। 8:30 पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों रिले कीतियां जाणगियां। 8:40 ते प्रोग्राम महक पंजाब दी। अज दा सिलसिला देश भगति दे गीत। 9 तो लेके 10 बजे तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण, जिस तहत 9 बजे प्रोग्राम चित्रलोक ते 9:30 बजे प्रोग्राम आज के फनकार रिले कीता जाएगा। 10 बजे आकाशवाणी जलंधर तो विशेष प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। 10:30 बजे आनंद माणोंगे प्रोग्राम सुखन दे वारिस दा। 11 बजे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे ते 11:05 ते आकाशवाणी FM रेनबो दिल्ली दा प्रसारण बॉलीवुड ट्रेल्स रिले कीता जाएगा। 12 हिंदी विच खबरां ते 12:05 ते सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो। 12:10 ते आनंद माणोंगे प्रोग्राम लेट्स रॉक एंड डांस दा। दोपहर दी सभा दे विच तुहाडे नाल रहणगे अमरजीत कौर।

6:20 प्रादेशिक खबरां आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे। 6:30 प्रोग्राम युववाणी सिलसिला मेरिया गल्लां मेरे गीत, अज दे मेहमान अर्श कुमार। 7:00 प्रोग्राम शाम सुहानी दा तुसी आनंद माणोगे, जिस तहत अज सिलसिला होएगा फिल्मी अफसाने और तराने, जिहड़ा कि आधारित होएगा फिल्म तुम बिन ते, ते पेश करनगे खुशप्रीत शेरगिल। 7:30 पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। 7:40 प्रोग्राम शाम सुहानी जारी रहेगा। 8:00 प्रोग्राम रंगे गजल, 8:45 समाचार संध्या यानी कि हिंदी विच खबरां, 9:00 अंग्रेजी विच खबरां आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो, ते उस तो बाद 9:15 तो लेके 11:00 तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण, ते 11:00 होएगी जी साडी अज दी प्रसारण सभा दी समाप्ति। ऐसी जानकारी साढ़े आज प्रसारित रिले किए जाने वाले प्रोग्रामा दी। तुसी ट्यून किया है आकाशवाणी एफ एम बठिंडा 101.1 MHz से। इस वेले स्टूडियो की घड़ी ते समा 6:15 का हो चुका है, ते हुन पेश करांगे प्रोग्राम अमृत।

कलयुग जहाज अर्जुन गुरु ए शब्द तुसी सरवन कारे सी पाई ओंकार सिंह रागी ते उना दे रागी जत्थे पासो गायन कीता होया। प्रोग्राम चल रहा जी अमृत वेला, समा 6:25 दा। ते आओ प्रोग्राम दे तहत अगला शब्द सरवन करदे आ पाई जसविंदर सिंह रागी ते उना दे रागी जत्थे पासो गायन कीता होया।

जी दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते गुड मॉर्निंग दे नाल आ गई हां जी मैं दीपा छबड़ा ते प्रोग्राम है जी सजरी सवेर। बहुत खूबसूरत लाइना किसी ने लिखी है जी, बारिश पड़े तो भागिए नहीं, थोड़ा चल लीजिए, बारिश की बूंदों का मजा लीजिए, क्या हुआ जो थोड़ा भीग जाओगे पर पिघलोगे नहीं सूख जाओगे। बारिश आई है थोड़ा चल लीजिए, खुद से मिल लीजिए और सबसे जरूरी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए जनाब।

जी बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है ते जिंदगी दे विच ना छोटियां छोटियां खुशियां बिखरियां पईयां ते तुसी बस उन्हां नूं समेटना है, भावे वो बारिश दियां बूंदा दे तौर ते तुहानूं मिलियां, भावे ओस दियां बूंदा मिलियां, भावे सवेर दी मिठी मिठी ठंडी ठंडी हवा या पंछियां दी आवाज़।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तो घर आ जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल्ले दूजे कमरे विच जाओ। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
0: जेल तो तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI कहता है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: पेश है सबका फेवरेट
5: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: जी प्रोग्राम चल रहा सजरी सवेर ते अज दा सिलसिला है जी मॉर्निंग क्विज ते मॉर्निंग क्विज लई साडे स्रोते हमेशा तैयार बर तैयार रहंदे ने ते एक स्रोता मेरे नाल आके जुड़ भी गए ने ते पुछदे आ जी ओ कौन ने ते कित्थों ने। हेलो
2: हेलो मैम गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग जी की हाल चाल।
2: बढ़िया जी
1: बढ़िया। आवाज है किदी है जी इतनी प्यारी आवाज पर थोड़ी डरी हुई आवाज लग रही है मेनू।
2: मैम बातें करने तो बोल रहे
1: हैं। दिल धड़की होता है धक धक धक धक।
2: हां जी हां जी
1: ये हुंदा ही है ना। पता नहीं मैनू मुंडियां दा नहीं पता पर कुड़ियां दा दिल ना जदों है ना कोई क्वेश्चन कोई पूछे ता धड़कन लग ही जांदा है ना।
2: हां जी हां जी मैम बिल्कुल।
1: पर तुहानू पता कुड़ियां बहुत स्ट्रांग हुंदियां ते फिलहाल जिहड़े रिजल्ट आए उहनां च कुड़ियां ने बहुत मल्लां मारियां है ना।

0: थैंक यू
1: अपेक्षा तुहानू बहुत बहुत बधाईआं तुसी पहले क्वेश्चन का आंसर तुसी दे दिता ते दूजा क्वेश्चन मैं तुहानू पुछदी हाँ ठीक है ते दूजा सौखा जिहा क्वेश्चन किहड़ा पुछिए अपेक्षा तो अपेक्षा तो वैसे मैं तुहानू अंडर एस्टिमेट नहीं करदी हो सकदा तुसी है ना मेरे औखे सवाल का भी जवाब दे दो है ना ते मैनू ए दस दो कि किला मुबारक केड़े शहर दे विच है नहीं अपेक्षा तुहाडा आंसर गलत हो गया किला मुबारक तो अपने ही शहर दे विच है बठिंडे दे विच ते म्यूजियम डे एक आ रहा है आने वाले दिनां दे विच ते तुसी किला मुबारक जरूर जायो उत्थे मत्था भी टेकियो ते तुहानू बहुत बहुत बधाईआं तुसी पहले सवाल का सही आंसर दिता पर कोई गल नहीं है ना हो जांदा ते तुसी पेपर दे विच वधिया वधिया लिख के आयो खुश रहो तंदरुस्त रहो अपेक्षा बहुत बहुत शुक्रिया
0: थैंक यू

लो दोस्तों, ऐसा ना अपेक्षा जी जिन्होंने साढ़े पहले सवाल का तां जवाब सही देता सी, पर थोड़ा जो घबरा के उन्होंने दूजे सवाल का आंसर जिहड़ा गलत देता। पर कोई गल नहीं जी, हो जाता है। ते तुसी दोस्तों जदों भी मैनू फोन मिलाना है तां पानी पूनी पी के ऐ ठरमे जी नाल बह के है ना ठंडे दिमाग नाल आंसर देने, क्योंकि दीपा बड़े सौखे सौखे सवाल तुहानू पुछ रही है ते मैनू उम्मीद है अज मैं बहुत सारे विनर इत्थे बना के जाने हैं।

0: अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
1: जी प्रोग्राम सर्जरी स्वेयर सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते मॉर्निंग क्विज एक होश होता 0164 242 3131 डायल करके शामिल हुए ने जी। देखते हैं कौन है।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार सत श्रीकाल बोल रहे हो उदास क्यों साउंड कर रहे हो थके पे हो सवेरे सवेरे मजदूर दिवस मनाने आ ना लेबर डे मनाने आ ते इस दे नाल एक होर दिन भी असी मनाने आ ओदा ना तुसी दस देना सवाल दा जवाब नहीं दे सके ए, दोस्तों अगर तुसी रेडियो साडा लगातार सुनदे हो ते असी ए चीजां नाल नाल जरूर दसदे आ जो मैं लास्ट टाइम क्विज किया सी ते मैं इस बारे जानकारी भी दी सी कि लेबर डे असी मनाने आ एक मई नू नाल ही इस दे असी मनाने आ महाराष्ट्र डे है ना इस दिन 1960 दे विच इन्हां राज्यां दा गठन होया सी इस करके महाराष्ट्र डे भी असी इसे ही दिन यानी कि एक मई नू मनाने आ।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निके निके तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक वक जमाता दे विद्यार्थियां नाल रिकॉर्ड कीता गया प्रोग्राम निके निके तारे।
1: लाडा आया आमा आया सामने काला बादल आया पानी लाया बारिश लाया खूब टमाटर दल बरसाया नाना बीगा ताता बीगा तन भी सारा दब साला बीगा वादा बताया नाता गया सामने खेल को बताया।
0: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मंदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निके निके तारे दा ए विशेष अंक।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना आज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत के तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी अर्श कुमार नू। प्रोग्राम दे विच गल्ला होनगियां अर्श कुमार दे दिल दियां ते नाल नाल सुनांगे उनां दे पसंदीदा गीतां नू। सो सुनना ना भुलना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत मेरिया गल्ला मेरे गीत।
1: लो जी एक होर छोटे जे प्यारे जे स्रोता साडे नाल जुड़े ने ते देखदे आं जी कौन ने। हैलो, हां जी कौन बोल रहे हो बेटा?
2: दलजीत सिंह।
1: हां जी दलजीत सिंह,
2: गुरजीत,
1: दरजीत, गुरजीत।
2: हां जी
1: ते प्यार नाल की कहंदे? गुरी
2: गुन्नी।
1: हां जी
2: गुन्नी।
1: ओके ते की करदे हो बेटा?
2: पढ़ाई कर
1: दे। बहुत सारी पढ़ाई कर दे हो कि थोड़ी जी कर दे हो?
2: बहुत सारी।
1: वधिया लगदा पढ़ना?
2: हां जी जी।
1: ते खेड़दे भी हो नाल नाल?
2: हां जी।
1: हां ते मम्मी पापा दी गल भी मानदे हो?
2: हां जी।
1: ते केड़ी क्लास पढ़दे हो पुत्तर? छेवीं च पढ़दे हो। ते तुहानू फिर सौखे सौखे क्वेश्चन पूछने पैणगे है ना? दसो सौखा कि औखा?
2: औखा।
1: औखा। चलो तुसी मैनू ए

प्यारे श्रोतियों, प्रोग्राम संबंधी एक जरूरी सूचना। दिन शनिवार, मिति 16 मई, शाम 7 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो अदालत होवेगा हिंदी फिल्म तुम बिनते। वाचक होंगे खुशप्रीत शेरगिल, निर्माता निर्देशक जनाब बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना, 16 मई दिन शनिवार शाम 7 बजे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना आज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्लां मेरे गीत दे तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी अर्श कुमार नू। प्रोग्राम दे विच गल्लां होणगीआं अर्श कुमार दे दिल दीआं ते नाल नाल सुणांगे उहनां दे पसंदीदा गीतां नू। सो सुनना ना भुलना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी दे तहत मेरिया गल्लां मेरे गीत।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तो घर आ जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल दूजे कमरे विच जाओ। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं ता बेटा जेल जावेगा।
0: जेल ता तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए,
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियों दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI कहिंदा है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, 16 मई दिन शनिवार शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

0: भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका,

0: जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्लेव फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा।

0: इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी, ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते गुड मॉर्निंग दे नाल आ गई हाँ जी मैं यानी कि दीपा छाबड़ा। प्रोग्राम थोड़े लिए लेके आई हाँ महक पंजाब दी, जिस दे तहत अज यानी कि शनिवार नूं असी तुहानूं सुनवाने हाँ जी देश भगति दे गीत। ते चलो अपने देश नूं सलाम करदे हां, अपने वीरां नूं शहीदां नूं सलाम करदे हां ते सुनदे हां प्रोग्राम महक पंजाब दी दा पहला खूबसूरत गीत। I love my India, I love

बहुत ही खूबसूरत इस गीत दे बोल लिखे सन मनोज मुंताशिर ने, संगीत सी जी आर कोदा। प्रोग्राम चल रहे महक पंजाब दी समाट वज के 56 मिनट का हो चुके ते आओ अगला गीत फिल्म फाइटर दे विचों सुन लैने। आवाजा ने विशाल ददलानी ते शेखर रावजियानी दिया, बोल कुमार दे, संगीत विशाल शेखर दा।

0: जी समा 8:59 मिनट 59 सेकेंड का, ठीक 9 बजे तो लेके 10 बजे तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण।
1: छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, और यह है चित्रलोक का अगला गाना।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

कब लगा कि आयशा फिल्म का ये गाना आपने सुना? वरुण ग्रोवर की बोलती है अनु मलिक की तरसी, और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज। फिल्म का नाम है छिछोरी। अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

0: और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

0: ta selfie lele re.
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

0: विक्की कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विक्की कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विक्की कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।
1: विक्की

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर

0: मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाएं। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।
1: जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला।

0: सबके मन बहलावर भैया, नाची गाई सबके मन बहलावर भैया, नाची गाई सबके मन बहलावर भैया।
1: साल 2012 चल रहा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान, और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

में से एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आंख में उबलती

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: डूंगे सम्मान।
1: अठवें गुरु श्री हर कृष्ण जी ने मानवता दी सेवा।
0: नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने निडरता नाल मानवता दी रखिया।
1: ते दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने न्याय वास्ते खड़न दा सिद्धांत दिता है।
0: साडे सारे गुरुआं दी सिख्यावां दा निचोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी विच संकलित है। गुरुआं दी बाणी दा पहला संकलन पंजवें गुरु अर्जन

0: अर्जन देव जी दा आगमन 15 अप्रैल 1663 ईस्वी वैसाख वदी सतवीं धन श्री गुरु रामदास जी दे घर माता पानी दी कुखों गोइंदवाल साहिब विखे होया।
1: गुरु साहिब दे बचपन बारे भट्टा ने इउं कहा,
0: तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो।
1: गुरु अर्जन देव जी, तुसी जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो, जन्म तो ही ईश्वर नाल जुड़े हुए हो। इसका एक इतिहासिक सबूत भी मिलता है कि अजे आप सिर्फ एक साल दे सन ते आप श्री गुरु अमरदास जी दे सिंघासन ते चढ़न दी कोशिश करन लगे। एक साल दे बालक ने 2.5 फुट उच्चे सिंघासन ते चढ़न दी पूरी कोशिश की पर चढ़ ना सके। माता पानी जी भजे भजे आए ते आप जी नू चुकिया ते आखिया कि इस गद्दी ते नहीं बैठना, ए धन गुरु अमरदास जी दा सिंघासन है, इस ते नहीं बैठीदा। ते इन्ने च गुरु अमरदास जी आ गए, बालक अर्जन देव जी नू सिंघासन ते बिठा के कहन लगे, ए दोता बाणी का बोता।
0: ए ता बाणी दा जहाज है, जे ए सिंघासन ते नहीं बैठेगा ता कौन बैठेगा। गुरु अमरदास जी दी ए सोच सही साबित हुई। सचमुच ही गुरु अर्जन देव जी बाणी दे जहाज जगत विच कहलाए।
1: बेबे पानी जी दा प्यार ते गुरु अमरदास जी दी जीवन जाच विरसे विच प्राप्त हुई। मुडली विद्या बाबा बुड्ढा जी तो ग्रहण कीती। आप पिता गुरु रामदास जी दी आज्ञा दा पालन बखूबी करदे सन। एक बार पिता गुरु रामदास जी ने आप जी नू ए कह के लाहौर भेजिया कि जिन्नी देर साडे वल्लों वापसी दा सुनेहा ना मिले तुसी वापस नहीं आना। गुरु पिता दे वियोग विच आप वल्लों जो पत्र लिखिया गया, शायद ए पत्र ही आप जी दी पहली रचना सी।

0: गुरु साहब ने उस समय प्रचलित संत भाषा, ब्रिज भाषा, रेखता, हिंदुस्तानी गाथा, संस्कृत, पंजाबी ते लहंदी सब वनगियां दियां भाषावां विच रचनावां रचियां। आप जी ने 30 रागां विच बाणी रची। आप संगीत ते रागां दी पूरी मुहारत रखदे सन। सरंदा आप जी दा मन पसंद साज सी।
1: गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना आप जी दा वडमुला कारज है। आप ने पहले 4 गुरुआं तो इलावा संतां भगतां दी रचना नूं इकत्तर करके उनां नूं रागां अनुसार संभालिया। ए वड अकारी धर्म ग्रंथ मनुखी एकता, सर्ब सांझी वालता ते विश्व भाईचारे दा प्रतीक है।
0: बाबा फरीद पंजाब, भगत कबीर ते रामानंद यूपी, भगत बेणी बिहार, नामदेव ते भगत त्रिलोचन महाराष्ट्र, भगत पीपा गुजरात, भगत सदना सिंध, भगत जयदेव बंगाल, भगत सैन ते पीखण राजपूताना, सारे संत भगत वख-वख इलाकियां दे होण दे बावजूद सारियां दा सुनेहा रब्बी एकता दा ही है। गुरु अर्जन देव जी ने सारी रचना नूं रागां अनुसार तरतीब दे के एक थां इकट्ठा कीता ते एक योग संपादक वांग सारा कारज निभाया। लिखाई दा काम भाई गुरदास जी तो करवाया। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना दा कारज 1604 ईस्वी विच संपूर्ण होया।
1: गुरु अर्जन देव जी जिथे गुरबाणी ते शांति दे पुंज सन, उथे देश ते धर्म लई शहादत देण तों वी नहीं झिझके। समय दी सरकार दा वर्ता ठीक नहीं सी। मुगल हकूमत ने आप नू तसीहे दित्ते। आप जी नू तत्ती तवी ते बिठाया ते सीस उत्ते गरम रेत पाई गई। जदों आप जी ने इस्लाम कबूलन तों इनकार कर दिता, आप हिरदे वेदक तकलीफां सहन करदे हुए लाहौर विखे शहीदी प्राप्त कर गए। शहादत वेले भी गुरु जी ने अटल रह के सच्चे सुच्चे बल दा प्रगटावा कीता।

0: गुरु अर्जन साहिब ने स्वै बलिदान दे नाल देश च राष्ट्रवाद दा मुड बनिया ते भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास दे पहले नायक बने। राष्ट्रवाद दे नाल नाल विश्व भाईचारे नूं भी गुरु अर्जन साहिब दी वड्डी देण है। गुरु ग्रंथ साहिब दा संकलन हरिमंदर दी नीं सूफी फकीर साईं मियां मीर तो रखवाना, लंगर दी प्रथा शुरू करके मनुख दियां धर्म जात पात दे नां ते पाईयां वंडियां नूं तोड़ना, अकाल समय माझा खेतर च आम लोकां लई खूह पटवाउणा ते सब तो उत्ते गुरु साहिब दी अदुत्ती शहादत, गुरु साहिब दे विश्व भाईचारे दी स्थापती च वड्डे मील पत्थर ने। गुरु साहिब दे तुर विरोधी जहांगीर तक ने अपनी स्वै जीवनी च गुरु साहिब दे विश्व भाईचारे दे दृष्टिकोण नूं विद्मान कीता है।
1: गुरु अर्जन साहिब दे विश्व भाईचारे दे संकल्प सदका सिख धर्म ते भारतीय सभ्यता सर्व धर्मां ते सभ्यतावां विच मोहरी बनी है। अज सारे भारतीयां नूं अपने सभ्याचार ते जीवन शैली ते माण है।
2: तुसी सुन रहे सी विशेष रूपक गुरु अर्जन देव जी अते विश्व भाईचारे दा संकल्प। वाचक रिनी शर्मा अते करमवीर करण, आलेख प्रिंसीपल तेजिंदर कौर, शब्द गायन भाई अमर सिंह खालसा अते उन्हां दा रागी जत्था। उन्हां नाल संगत कर रहे सन

0: लिखा
1: वाजी वाह बहुत खूब।
0: मेरी रूदा हानी तू, मेरा सब कुछ तू ही है। मेरी रूदा हानी तू, मेरा सब कुछ तू ही है। तेरा ही जिक्र करा, तेरा ही जिक्र करा।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निक्के निक्के तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक वक जमाता दे विद्यार्थियां नाल रिकॉर्ड कीता गया प्रोग्राम निक्के निक्के तारे।
1: लाडा आया, आमा आया, सामने काला बादल आया, पानी लाया, बारिश लाया, खूब टमाटर दल बरसाया, नाना बीगा, ताता बीगा, तन भी सारा दबसाला बीगा, वादा बताया, नाता गया, सामने खेल को बताया।
2: जोरदार तारियां भाई।
0: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मंदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे दा ए विशेष अंक।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना आज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरियां गल्लां मेरे गीत दे तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी अर्श कुमार नू। प्रोग्राम दे विच गल्लां होणगियां अर्श कुमार दे दिल दियां ते नाल नाल सुनांगे उनां दे पसंदीदा गीतां नू। सो सुनना ना भुलना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी दे तहत मेरियां गल्लां मेरे गीत।

आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मॉसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को

और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप हैं अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंजी प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स, आप सभी का पसंदीदा, जिसमें रहती हैं गपशप और बहुत सारी गॉसिप्स अबाउट द बॉलीवुड न्यू बॉलीवुड रिलीज, ओटीटी रिलीज, और क्या चल रहा है, क्या अपकमिंग है, किसमें घमासान है, और कौन किसको डेट कर रहा है, कौन शादी के नजदीक जा रहा है, कौन डिवोर्स में आ रहा है, इन सभी बातों पर आपके साथ बात करेंगे हम। एंड डेफिनेटली बॉलीवुड का तड़का है तो वो तो जारी रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स में। कमिंग अप नेक्स्ट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट, उफ तेरी अदा कार्तिक कौलिक, कार्तिक शंकर महादेवन की वॉइस में।

0: बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ और आदाब, हम करवा ही चुके हैं आपको और बॉलीवुड ट्रेल्स, जहां हम बात करते हैं सिर्फ बॉलीवुड की गलियों का, वो कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और शायद हेडलाइंस भी जिनकी नहीं आती वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज का एपिसोड तो भैया बहुत खास है क्योंकि मई की इस गर्मी में बॉलीवुड का पारा भी हाई है। शिवाजी की दहाड़ से लेकर कान्स के रेड कार्पेट तक सब कुछ है मेरे पास, तो आप बने रहेंगे किसके साथ? आरती मल्होत्रा के साथ। एंड वेल भाई, रितेश देशमुख की राजा शिवाजी का क्रेज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रितेश देशमुख थोड़े से नाराज है क्योंकि उनकी फिल्म से ज्यादा उसके बजट को लेकर बात हो रही है कि भाई 100 करोड़ में बनी या ये बनी वो बनी। तो इस पर रितेश देशमुख का बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा एक जवाब आया है कि भाई क्यों आप फिक्र करते हैं कि कितना बजट लगा, कितना कमाया, क्या किया, आप फिल्म का असली एसेंस खो रहे हैं। जस्ट गो एंड वॉच द फिल्म, आपका तो सिर्फ 100 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए सिर्फ इतना ही लग रहा होगा ना, तो क्यों आप इन चक्रों में पड़ते हैं? क्योंकि भैया उनके हिसाब से तो असली बजट कभी भी रिवील आउट नहीं होता, ये तो प्रोड्यूसर्स ही जानते हैं कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। एंड साथ ही वो कहते हैं कि जब मैंने शोले देखी, इंजॉय किया, तो सिर्फ अमिताभ बच्चन को इंजॉय किया, अपने बचपन में ये नहीं सोचा कि ये कितना कमा रहे हैं या इनका कितना बजट रख रहा है। वेल एनीवेज, राजा शिवाजी इज डूइंग वेरी वेल एंड हमारी गुड गुड गुड गुड बेस्ट विशेस हैं। मराठी में तो बहुत कमाल ही कर रही है, हिंदी सिनेमा भी अच्छा चल रहा है। वेल रितेश देशमुख की बात की है तो उन्हीं की फिल्म हाउसफुल 2 से आप सभी के लिए अनारकली डिस्को चलेगी। आप चलेंगे डिस्को?
1: जाने जा तेरे लिए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा

0: के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: जी बिल्कुल, वापस आप सभी के साथ फ्रॉम रेनबो आकाशवाणी दिल्ली, दिल से दिल तक अपना रिश्ता बनाए हुए। और आप सब लोग वेट कर रहे होंगे ना कि भैया आरती क्या कर रहे हो, वो सवाल तो पूछ ही नहीं रही ना, जिसका हमें इंतजार है। जी हाँ, आपको इंतजार है उस सवाल का जो बनाएगा आपको बॉलीवुड सरताज। एंड वेल, मैं सच्ची बोलूं, दिल से बोलूं, आप सभी ना सही जवाब देते हो। आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, या फिर हम लोग बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। एनीवेज, जब आप सभी बॉलीवुड सरताज हैं तो चलिए इसी दौड़ में आगे बढ़ते हैं। और बड़ी ही फ्रेश पेयरिंग की बात करने वाली हूं मैं अभी। इंडस्ट्री में चर्चा है कि अभिषेक बच्चन शाहरुख खान की आने वाली फिल्म द किंग में विलन का रोल निभा सकते हैं, और जिसमें सुहाना खान भी है। बिल्कुल, अब बाप बेटी की फिल्म और उसमें अभिषेक विलन, भाई ये तो ब्लॉकबस्टर गॉसिप है। क्यों? वेल, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कोई हिडन नहीं, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी राय जानना चाहती हूँ आज। और वो ये है कि क्या आपको लगता है क्या अभिषेक बच्चन को विलन के रोल में देखना बड़ा रोमांचक होगा? सिर्फ इतना सा है, आपकी पर्सनल राय के बारे में बात कर रही हूँ, और जिसे आप मुझ तक भेज सकते हैं। आप अपने SMS आप मुझे भेज सकते हैं 9868107070 9868107070, और आप सभी हैं मेरे लिए बॉलीवुड सरताज। और जब अभिषेक बच्चन की बात की है तो उनकी फिल्म गुरु याद ही होगी आपको। उसी फिल्म से हरिहरन और अलका याग्निक की वॉइस में एहर थे आशकी, एंड इसमें उनकी पेयरिंग थी उनकी बिलवड वाइफ ऐश्वर्या राय।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाए, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट

0: आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

Today we are again back with you, Akashwani Rainbow 102.6 megahertz ki frequency par dil se dil tak. And bhai ab baat karenge kuch international bhi. Haan, international ho gaye hum. Aur Cannes 2026 ka drama to pata hi hoga aapko, har saal hi hota hai aur har saal hi kuch na itni sari gossip se idhar se udhar se nikal ke aate hain. Lekin is baar jo nishana bani hai hamari pyari si Alia Bhatt, Cannes film festival chal raha hai aur Alia Bhatt wahan red carpet par छाई हुई थी. लेकिन गॉसिप यह है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पेपराजी ने उन्हें इग्नोर किया. है सच में ऐसा हुआ? वेरी बैड. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, लेकिन जो सोनू सूद है ना, उनके बढ़िया वाले भैया, उन्होंने उनके बचाव में उतर कर ट्रोलर्स की तो क्लास लगा दी है. और भाई लगानी भी चाहिए, क्यों ऐसे करते हैं हम अपने ही एक्टर्स को जब वो इंटरनेशनल जाते हैं कुछ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं और हम ही यहाँ बैठ के उनको ट्रोल्स करने लगते, गलत बात है ना. चलिए जब आलिया भट्ट की बात हुई है तो उनकी फिल्म 2017 की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बद्रीनाथ की दुल्हनिया की भी बात कर लेते हैं. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट की इस फिल्म ने सुपर डुपर कमाई की और सुपर डुपर हिट रही. ये फिल्म 39 करोड़ की इसके बजट में बनी थी और 200 करोड़ से ऊपर की इसकी कमाई हुई थी. अमाल मलिक एंड श्रेया घोषाल की वॉइस में आप सभी के लिए आशिक सरेंडर हुआ एंड वेल

हर शादियों का सीजन ना एक रेल बोल है।

जी अभी आपकी राय मैं लेने वाली हूँ। जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या आप चाहते हैं अभिषेक बच्चन को देखना विलन के रूप में, तो वो कैसा रहेगा? मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से मुझे कह रहे हैं कि जब हीरो में ज्यादा स्पेस ना बची तो उसे विलन का रोल करना चाहिए। आए मेरा इसमें ये कहना है इम्तियाज जी कि जो विलन का रोल है ना वो हीरो से बहुत ऊपर होता है और विलन का रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पता है जब अच्छे अच्छे लोग उस नेगेटिव कैरेक्टर में आते हैं ना, पता नहीं को कितना मुश्किल होता है। डियर आरती जी गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ इज धर्म भाटिया रोहतक, बिल्कुल अच्छा लगेगा, वेरी गुड। अभिनयकर्ता का काम है, अभिनय होता है, इसीलिए सही लगेगा। नीलेश कुमार पाटकर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से कह रहे हैं मुझे, एंड शंकर गोवा पंजम से कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं पहली बार देखेंगे इस कैरेक्टर में तो अच्छा ही होगा, एंड वी आर एक्साइटेड, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। एंड हमारे पास मैसेजेस और मोहम्मद कासिम किलपुर से कह रहे कि अभिषेक को हाँ विलन के

में देखना। अच्छा होगा। और एक और मैसेज ले लेती मैं, अभिषेक बच्चन ने पहले भी कुछ फिल्मों में नेगेटिव रोल किया है। एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहती थी आपसे, एंड इसीलिए किंग फिल्म में उनका नेगेटिव रोल बढ़िया ही होगा। प्रवीण चौहान खरगोर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रवीण जी बिल्कुल सही कहा आपने, इनफैक्ट उन्होंने कई फिल्म में ये साबित किया है और अपने अभिनय का लोहा हम सबको दिखाया भी है। एनीवेज हमारी तो बहुत बहुत सारी गुड विशेज है, एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड और जल्द मैं उनका देखना चाहती हूँ। आप भी बात कर लेते क्योंकि आप समय रह गया है कम दोस्तों, अब हमें चलना होगा और नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में मिलेंगे आपको। लेकिन ओटीटी पर जो धमाकेदार सीरीज रिलीज हुई है कल कर्तव्य, जिसकी हम लोग वेट कर रहे थे, लास्ट वीक मैंने बात भी किया था, सैफ अली खान साहब की स्ट्रीम हो गई है और भाई साहब सैफ का वो पुलिस वाला अंदाज एकदम माइंड ब्लोइंग है और ओटीटी पर ही इन्होंने इतना धमाका मचा दिया। वेल जब सैफ अली साहब की बात हुई है तो हम तुम की बात तो जरूर होगी, और हम तुम की बात होगी तो अलका याग्निक और शान की वॉइस में आप सभी के लिए लड़कियां क्यों लड़कों नहीं होती। इस फिल्म को एंजॉय करेंगे और मुझे यानी आरती को देंगे आप इजाजत। नमस्कार।

0: लेगा तौलिया कहीं फर्श पे, टूथपेस्ट का ढक्कन कहीं, कल के मोजे उलट के पहने, वक्त का कुछ भी होश नहीं।
1: जीने का तुमको ढंग सिखलाती है, तुम्हें जानवर से इंसान बनाती
2: है। तुसी सुन रहे सी आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली दे प्रसारण। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 11:59 ਤੇ 23

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16 रूपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन

6 में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन अर्गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिती 17 मई दिन एतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निके निके तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक वक जमाता दे विद्यार्थियां नाल रिकॉर्ड कीता गया प्रोग्राम निके निके तारे।
1: लाडा आया आमा आया सामने काला बादल आया पानी लाया बारिश लाया खूब टमाटर दल बरसाया नाना बीगा ताता बीगा तंबी सारा दबसाला बीगा वादा बताया नाता गया सामने खेल को मताया।
2: वाह भाई वाह जोरदार तारियां भाई।
0: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निके निके तारे दा ए विशेष अंक।

प्यारे श्रोतियों, प्रोग्राम संबंधी एक जरूरी सूचना। दिन शनिवार मिति 16 मई शाम 7 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो आधारित होवेगा हिंदी फिल्म तुम बिनते। वाचक होंगे खुशप्रीत शेरगिल, निर्माता निर्देशक जनाब बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना, 16 मई दिन शनिवार शाम 7 बजे सिलसिला फिल्मी अफसाने और

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना आज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत के तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी अर्श कुमार नू। प्रोग्राम दे विच गल्ला होणगीआं अर्श कुमार दे दिल दीआं ते नाल नाल सुणांगे उहनां दे पसंदीदा गीतां नू। सो सुनना ना भुलना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत मेरिया गल्ला मेरे गीत।

0: पैगामों में भी कितना प्यार छुपा होता है। हर लफ्ज में दिल का एहसास बसा होता है। यूं ही नहीं लोग याद करते हैं किसी को, हर रिश्ते में कोई खास रिश्ता छुपा होता है। जी हाँ श्रोतियों, बिल्कुल रिश्तियां दे विच खास रिश्ता आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे श्रोतियां दा साडे नाल। ते बिल्कुल जी उसे ही रिश्ते नूं निभाउण दी इस कड़ी दे विच प्रोग्राम पैगाम लेके इस रविवार मिती 12 मई सवेरे 7 बजे सजरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे अपने पैगामां नूं।
1: यूं ना कभी करना इंतजार।
0: पैगाम पेश करनगे सीमा मेहरा। सो तुसी पैगाम भेज सकते हो 7013 73 146 ते।
2: मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार।
0: प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। और सुनना ना भूलना मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर के तहत हफ्ता भरी सिलसिला पैगाम।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, 16 मई दिन शनिवार शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्या।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निके निके तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक वक जमाता दे विद्यार्थियां नाल रिकॉर्ड कीता गया प्रोग्राम निके निके तारे।
1: लाडा आया, आमा आया, सामने काला बादल आया, पानी लाया, बारिश लाया, खूब टमाटर दल बरसाया, नाना बीगा, ताता बीगा, तंबी सारा दबसाला बीगा, वादा बताया, नाता गया, सामने खेल को मताया।
2: बहुत भाई, बहुत जोरदार तारियां भाई।
0: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निके निके तारे दा ए विशेष अंक।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा दे सूझवान श्रोतियो मिति 17 मई दिन एतवार नूं शाम 5 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां दे तहत किस्सा सैफुल मलूक भाग पहला।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिती 17 मई दिन एतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।

प्यारे श्रोतियों, प्रोग्राम संबंधी एक जरूरी सूचना। दिन शनिवार, मिति 16 मई, शाम 7 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो अदालत होवेगा हिंदी फिल्म तुम बिनते। वाचक होंगे खुशप्रीत शेरगिल, निर्माता निर्देशक जनाब बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना, 16 मई दिन शनिवार शाम 7 बजे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।

0: पैगामों में भी कितना प्यार छुपा होता है। हर लफ्ज में दिल का एहसास बसा होता है। यूं ही नहीं लोग याद करते हैं किसी को, हर रिश्ते में कोई खास रिश्ता छुपा होता है। जी हाँ श्रोतियो, बिल्कुल रिश्तियां दे विच खास रिश्ता आकाशवाणी FM बठिंडा दे श्रोतियां दा साडे नाल। ते बिल्कुल जी ओसे ही रिश्ते नूं निभाउण दी इस कड़ी दे विच प्रोग्राम पैगाम लेके इस रविवार मिति 12 मई सवेरे 7 बजे सजरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे अपने पैगामां नूं।
1: यूं ना कभी करना इंतजार।
0: पैगाम पेश करनगे सीमा मेहरा। सो तुसी पैगाम भेज सकते हो 7173-73-146 ते।
2: मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार।
0: प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। और सोना ना बोला मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर के तहत हफ्ता भरी सिलसिला पैगाम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं गुरविंदर सिंह सहोता तों प्रादेशिक खबरां सुणो। पंजाब पुलिस ने उत्तरी भारत के सब तो वड्डे साइबर धोखाधड़ी गिरोहां विचों एक दा पर्दाफाश करदिआं लुधियाणा ते होर थावां तों 132 लोकां नूं गिरफ्तार किया है। दोषी कथित तौर पर जाली कॉल सेंटर चला रहे सन, जो पॉप अप घोटालिया, रिमोट एक्सैस टूल्स ते जाली बैंक सुरक्षा अलर्ट राही विदेशी नागरिकां समेत पीड़ितां नूं निशाना बनाउंदे सन। इस बारे लुधियाणा के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा कि पुलिस ने दोषी

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिती 17 मई दिन ऐतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निके निके तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक-वक जमाता दे विद्यार्थियों नाल रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम निके निके तारे।
1: लाडा आया, आमा आया, सामने काला बादल आया, पानी लाया, बारिश लाया, खूब टमाटर दल बरसाया, नाना बीगा, ताता बीगा, तंबी सारा दबसाला बीगा, वादा बताया, नाता गाया, सामने खेल को मताया।
2: वाह भाई, वाह, जोरदार तालियां भाई।
0: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निके निके तारे दा ए विशेष अंक।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना आज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत के तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी अर्श कुमार नू। प्रोग्राम दे विच गल्ला होनगियां अर्श कुमार दे दिल दियां ते नाल नाल सुनांगे उना दे पसंदीदा गीतां नू। सो सुनना ना भूलना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत मेरिया गल्ला मेरे गीत।

0: पैगामों में भी कितना प्यार छुपा होता है। हर लफ्ज में दिल का एहसास बसा होता है। यूं ही नहीं लोग याद करते हैं किसी को, हर रिश्ते में कोई खास रिश्ता छुपा होता है। जी हाँ श्रोतियों, बिल्कुल रिश्तियां दे विच खास रिश्ता आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे श्रोतियां दा साडे नाल, ते बिल्कुल जी ओसे ही रिश्ते नूं निभाउण दी इस कड़ी दे विच प्रोग्राम पैगाम लैके इस रविवार मिती 12 मई सवेरे 7 बजे सजरी सवेर ते तहत तुसी सुनोगे अपने पैगामां नूं।
1: यूं ना कभी करना इंतजार।
0: पैगाम पेश करनगे सीमा मेहरा। सो तुसी पैगाम भेज सकते हो 7173 73 146 ते।
2: मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार।
0: प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। और सुनना ना भूलना, मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर के तहत हफ्ता भरी सिलसिला पैगाम।

प्यारे श्रोतियों, प्रोग्राम संबंधी एक जरूरी सूचना। दिन शनिवार मिति 16 मई शाम 7 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो अदालत होवेगा हिंदी फिल्म तुम बिनते। वाचक होंगे खुशप्रीत शेरगिल, निर्माता निर्देशक जनाब बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना, 16 मई दिन शनिवार शाम 7 बजे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।

0: आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।

0: पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया।

0: रेखा, छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंक

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिती 17 मई दिन ऐतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निके निके तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक वक जमाता दे विद्यार्थियां नाल रिकॉर्ड कीता गया प्रोग्राम निके निके तारे।
1: लाडा आया आमा आया सामने काला बादल आया पानी लाया बारिश लाया खूब टमाटर जल बरसाया नाना बीगा ताता बीगा तंबी सारा दबसाला बीगा वादा बताया नाता गया सामने खेल को मताया।
0: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निके निके तारे दा ए विशेष अंक।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना आज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत के तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी अर्श कुमार नू। प्रोग्राम दे विच गल्ला होनगियां अर्श कुमार दे दिल दियां ते नाल नाल सुनांगे उना दे पसंदीदा गीतां नू। सो सुनना ना भूलना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत मेरिया गल्ला मेरे गीत। प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना आज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत के तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी अर्श कुमार नू। प्रोग्राम दे विच गल्ला होनगियां अर्श कुमार दे दिल दियां ते नाल नाल सुनांगे उना दे पसंदीदा गीतां नू। सो सुनना ना भूलना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत मेरिया गल्ला मेरे गीत।

0: पैगामों में भी कितना प्यार छुपा होता है। हर लफ्ज में दिल का एहसास बसा होता है। यूं ही नहीं लोग याद करते हैं किसी को, हर रिश्ते में कोई खास रिश्ता छुपा होता है। जी हाँ श्रोतियों, बिल्कुल रिश्तियां दे विच खास रिश्ता आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे श्रोतियां दा साडे नाल। ते बिल्कुल जी उसे ही रिश्ते नूं निभाउण दी इस कड़ी दे विच प्रोग्राम पैगाम लैके इस रविवार मिती 12 मई सवेरे 7 बजे सजरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे अपने पैगामां नूं।
1: यूं ना कभी करना इंतजार।
0: पैगाम पेश करनगे सीमा मेहरा। सो तुसी पैगाम भेज सकते हो 7173 73 146 ते।
2: मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार।
0: प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। और सुनना ना भूलना मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर के तहत हफ्ता भरी सिलसिला पैगाम।

इस प्रोग्राम च सानू तकनीकी साथ समूह टेक्निकल स्टाफ वालों मिलिया। प्रोग्राम दे निर्माता श्री बलजीत शर्मा। इस दे नाल ही मैनू अमरजीत मान नू प्रोग्राम सुरीली दुपहर खत्म करन दी दिओ आग्या। नमस्कार।

0: जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एमजी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: चाहे की
2: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और

0: चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
0: हम कुलपति कर्ण के शिष्य है राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
1: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
0: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
1: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
0: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
1: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
0: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
1: शकुंतला?
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
1: कुलपति कब लौटेंगे?
0: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
0: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
1: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूट जाएंगी।
4: लताएं भी रूटती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूटती भी हैं और प्रसन्न भी होती हैं, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
2: अरे अनुसुईया, ओह, सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समा

0: ಮಾಯ ಹುವ ಯಾವನ್.
1: ಪ್ರಿಯಂವದಾ, ಏಕ ಅಚ್ಛಿ ಬಾತ್ ಕಹೂ?
2: ತೇರೆ ಮುಂಹ ಸೆ ತೋ ಬುರಿ ಸೆ ಬುರಿ ಬಾತ್ ಭಿ ಅಚ್ಛಿ ಲಗ್ತಿ ಹೈ ರೀ.
1: ಪರಿಹಾಸ್ ನಾ ಕರ್.
2: ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ ಕರ್ತಿ, ಬತಾ.
1: ದೇಖ್ ವೋ ಸಾಮ್ನೆ ದೇಖ್, ಕಲಿಯೋ ಸೆ ಲದಿ ಮಾಧ್ವಿ ಲತಾ ಕಿತ್ನಿ ಜಲ್ದಿ ಪಡಿ ಹೋ ಗಯಿ ನಹೀ?
2: ತೇರಿ ತರಾ
1: ಫಿರ್ ಪರಿಹಾಸ್?
2: ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ ಕರ್ತಿ ಪರಿಹಾಸ್. ಅಬ್ ಮೈ ಭಿ ಏಕ ಅಚ್ಛಿ ಬಾತ್ ಬತಾಊ?
1: ಹಾ ಬತಾ.
2: ಜಲ್ದಿ ಹೀ ತೇರಾ ವಿವಾಹ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ.
1: ಥತ್, ತೇರಾ ತೋ ಸಿರ್ ಘೂಮ್ ಗಯಾ ಹೈ.
2: ಸಚ್? ಮೈನೆ ಅಪ್ನೆ ಕಾನೂ ಸೆ ಸುನಾ ಹೈ.
1: ಅಚ್ಛಾ.
2: ಪಿತಾ ಕಣ್ವ ಕಹ ರಹೆ ಥೆ ಕಿ ಮಾಧ್ವಿ ಲತಾ ಕಾ ಮುಕುಲಿತ್ ಹೋನಾ ತೇರೆ ಲಿಯೆ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಹೈ.
3: ಅಚ್ಛಾ, ತಭಿ ಇತ್ನಾ ಧ್ಯಾನ ರಖಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಮಾಧ್ವಿ ಲತಾ ಕಾ.
1: ಕ್ಯೂ ನಾ ರಖೂ ಧ್ಯಾನ, ಮೇರಿ ಬಹನ್ ಜೋ ಹೈ.
4: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे. अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग.
1: अरे भाग ना, भगाओ ना इसे. क्या
2: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो.
2: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी.
4: अरे बचाओ, बचाओ ना.
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए.
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
2: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था.
3: आपके आते ही भाग भी गया.
2: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना.
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल.
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं. आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं.
2: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य.
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी.
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी.
1: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी.
2: अब बैठ भी जा.
1: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
2: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य.
3: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: अब क्या बताऊं इन्हें. मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूं. पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं.
2: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता.
5: और ही ढंग से?
3: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते. क्यों शकुंतला,
1: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
2: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला.
3: बहुत मीठा है इसका गला,
2: करती रहती है सबका भला.
3: इसने आज तक किसी को नहीं छला.
2: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है.
3: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है.
5: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं.
2: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य. वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है.
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं.
3: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा.
5: फिर
3: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर.
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य. किंतु
2: क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था. अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है.
2: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य. पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं.
1: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में.
2: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
3: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
5: वृक्षों को सींचने का ऋण?
2: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया.

0: था इसके शेष दो वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
1: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
1: ये लीजिए।
0: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है, आपके पास ये अंगूठी?
1: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
2: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
0: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
1: मैं आभारी हूँ।
3: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
1: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?
3: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
2: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
0: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
1: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
0: चलो शकुंतला। चलो
1: चल, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तुमसे ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा
0: है। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूँ माधव्य, अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूँ।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: है? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
2: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
2: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
2: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
2: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
3: महाराज की जय हो, दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
3: जो आज्ञा महाराज।
4: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
5: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।

0: महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूँ मुनिजन।
2: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
0: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
2: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
3: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
3: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
2: आर्य की जय हो।
3: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
3: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
3: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
4: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
4: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, खुद समझ में नहीं आता माधव्य।
2: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
2: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
2: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
2: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
2: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
2: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
2: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो

0: दृश्य जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से
1: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
0: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला। समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया। हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
2: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
1: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
2: वो कैसे?
1: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
2: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
1: मुझे एक उपाय सूझा है।
2: क्या?
1: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
2: फिर
1: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
2: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
1: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
2: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
2: क्या शकुंतला,
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
2: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
1: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।

0: मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
0: जरूर।
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
0: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
0: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
0: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
0: उनका उसका नाम था।
1: हाँ, हाँ।
0: तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
1: जी।
0: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
1: जी, जी, जी।
0: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ, हाँ।
0: तो एखादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
1: हाँ।
0: तो आपके घर में नहीं आई,
1: हाँ।
0: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
1: हाँ।
0: ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं,
1: हाँ।
0: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
0: श्री रामचंद्र जी। तो षणमुखन में शो था और उनका प्रोग्राम है, तो उनके गाने का जाहिर है। लेकिन कोई लोग खास तौर पे करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना, दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे।
1: अच्छा।
0: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
0: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है,
1: हाँ,
0: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके, मराठी, माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
0: वो
1: जी।
0: पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
1: अच्छा।
0: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
0: एक समय काली पास सुर है, तो
1: हाँ,
0: खर्च के जो सुर होते हैं,
1: हाँ,
0: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने, वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी, क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
1: हाँ,
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू
1: हाँ,
0: घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन दे, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी
0: बस ये दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: जी जी अन्ना जी को, यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम
0: जी,
1: याद करें
0: जी,
1: तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
0: बहुत,
1: उसमें
0: बहुत।
1: से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं नहीं, वो तो नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी।
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ,
0: जी,
1: ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा। आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत।
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना
0: जी,
1: कोई फिल्म का,
0: हाँ,
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी,
0: ओहो,
1: तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,

0: लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी।
1: अच्छा,
0: तो अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका।
1: अच्छा।
0: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना, पाड़ाल पिकला हम वो गाई है। वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है। तो उसकी उसकी नहीं है। तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो बस उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंसूर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
1: बिल्कुल।
0: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रे का फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
1: अच्छा,
0: था
1: अच्छा, कट आउट
0: बहुत बड़ा कटआउट बनाया था।
1: हाँ।
0: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, तो पत्रे का बनाया था
1: जी, जी, जी।
0: मेटल का। तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्ता और सुनहरी यादे, वो मेरे एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके। तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
1: घूम रहा
0: ऐसा
1: अच्छा,
0: लगता
1: अच्छा,
0: था
1: अच्छा।
0: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ। मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की। बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ। एक तरफ से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा। लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना गा। फिर वो शांत हो गया आदमी।
1: श्रोताओं की बात निकली है
0: जी,
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गाँव में शो किए हैं और विदेशों में भी किए हैं
0: जी,
1: हर शहर का श्रोता अलग होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: फिर दो गाने के बाद ये रात को डाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो सिखा
1: अच्छा,
0: के नहीं आती
1: बात। अच्छा, अच्छा।
0: और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
1: जी, जी।
0: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
0: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला प्रमिला भी अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: वो रफी साहब का गाना एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको।
1: हाँ।
0: रफी साहब पहले शुरू करते थे
1: जी।

गया फिर जानी विस्की अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है।
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं?
0: हाँ,
1: ये होता है, ये छपका दोष आता है उनके
0: ऊपर,
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, मैं उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरा शो देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो,

0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं,
1: बिल्कुल
0: वो किस्सा
1: बिल्कुल
0: बहुत सुंदर
1: बिल्कुल.
0: होता है। क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनके कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं
0: प्राइवेट
1: है.
0: शोज भी होते कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज भी होते
0: जी,
1: थे,
0: कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी।
1: कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए तो बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल बम्बई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी,
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी.
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
0: जी
1: किया.
0: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
1: हाँ
0: हैं,
1: जी,
0: सबका अपना अलग अंदाज होता
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: अपना स्टाइल
1: जी
0: होता है।
1: एकदम.
0: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका
1: समझ,
0: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही
0: उनकी
1: बात, सही बात.
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं, हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
1: हाँ जी,
0: शमशाद
1: हाँ जी,
0: बेगम जी के
1: हाँ
0: प्रस्तुत,
1: जी, हाँ.
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: यूं
0: किन
1: कहूंगी
0: कंपोजिशंस में
1: कि
0: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि
0: जी जी
1: पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे
0: जी
1: वो चैलेंजिंग थे.
0: अच्छा
1: हाँ, अभी
0: अच्छा
1: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पुराने जो गाने थे
0: हाँ
1: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
0: हाँ
1: बीच का,
0: जी
1: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए, नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह का हुआ करता था. और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
0: हाँ समझ में आता
1: ऐसा चिल्लाते थे जरा
0: जी
1: भी.
0: जी
1: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ.
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
0: अच्छा
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधे का नाच रे गाना,
0: जी जी
1: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है.
0: अच्छा
1: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा
0: जी
1: सा धुलिया के पास,
0: जी
1: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह वगैरह, तो आया वो, आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया.
0: हाँ
1: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
0: हाँ
1: क्लासिकल का ज्ञान
0: हाँ
1: था,
0: हाँ
1: तो नहीं, वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया,
0: ओ
1: वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
0: हाँ
1: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है
0: जी
1: मुकरी,
0: जी
1: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा.
0: बिल्कुल,
1: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए,
0: तो श्रोताओं के
1: वे
0: समझ में आ
1: पुराने जो
0: जाते हैं।
1: गाना
0: जी जी
1: बराबर उनको ए
0: बिल्कुल
1: करके चिल्ला देते वहां से.
0: हाँ, क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
1: हाँ,
0: सुना
1: वो
0: है, तो
1: उनके
0: उन्हें
1: दिमाग
0: वैसा का
1: में
0: वैसा वो सुनना
1: वैसा के
0: चाहते
1: वैसा.
0: हैं।
1: अभी ये
0: जी
1: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टर टर
0: हाँ
1: टर, वो
0: हाँ
1: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा
0: हाँ
1: गाना, इतना
0: जी
1: म्यूजिक
0: जी जी
1: चिपक
0: जी
1: के चलता था
0: जी
1: शब्दों को.
0: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
1: जी
0: उनकी नजर से एक
1: हाँ,
0: सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
1: मिलता
0: में,
1: नहीं है, सही बात,
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
1: बजा
0: अपना
1: करते.
0: उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल,
0: हाँ
1: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से.
0: जी
1: इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ
0: जी
1: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
0: जी
1: नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया,
0: हाँ
1: उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
0: सिंह
1: होता,
0: हाँ
1: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का,
0: बिल्कुल
1: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था
0: हाँ
1: सालों साल तक.
0: जी
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
0: हाँ
1: बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से,
0: हाँ
1: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से तुमसे जो बदली हो जाएगा
0: जी
1: ना,
0: जी
1: ना जी, तो जो मेरा

0: मेन फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का,
1: जी
0: उसमें एक रिहर्सल
1: हाँ
0: और शो
1: जी,
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
1: ओ
0: हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
1: क्या
0: बात।
1: बात।
0: तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे म्यूजिशियंस,
1: हाँ, हाँ,
0: एक
1: हाँ,
0: संजय मराठे करके है,
1: जी
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई,
1: जी
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है। तो
1: अच्छा
0: ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन
1: हाँ
0: कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना
1: बिल्कुल
0: रिहर्सल,
1: बिल्कुल
0: तो एक रिहर्सल और शो।
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको,
1: जी
0: शो
1: जी
0: को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके,
1: विनय मानके,
0: विनय मानके।
1: जी, मैं श्रोताओं को बता
0: और
1: दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं,
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ,
1: हाँ
0: बहुत सारे
1: जी
0: जिंगल
1: जी
0: गाए
1: जी
0: उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
1: हाँ
0: परफॉर्म होता है,
1: जी
0: वो था। बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते
1: जी
0: थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
1: अच्छा
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा गया।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: सिंगर
0: एक गाना था अन्ना
1: जी,
0: जी का,
1: हाँ हाँ
0: भोली सूरत दिल के खोटे,
1: हाँ
0: नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये
1: हाँ
0: बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली,
1: ओह
0: कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब
1: अच्छा
0: वो ठीक था, लोगों को भी
1: अच्छा
0: मजा आता
1: मस्ती के
0: था,
1: मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड में।
1: रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी.
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसका. बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था.
1: जी, जी.
0: अच्छा गाता.
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं. कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं पड़वा के शो में, वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए. वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ.
0: प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली. सामने दर्शन हुआ साक्षात. तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये. तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे. लेकिन वो भारगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा.
0: आई. फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, पर गायला उभं राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है. मतलब उसने उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको. क्या बात. अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी,
1: हैं.
0: हाँ जी.
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सरदार फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: निर्मला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन पाहुन।

0: pikkulei amba. Ala bai parala pikkulei amba. Masla bagun tumi zana hoppa una. Namula bagun tumi zana hoppa una. Hoppa una, pa una, pa una zara thamba. Hoppa una zara thamba. Arghe parala pikkulei amba. Ala bai parala pikkulei amba. Honitvag parala pikkulei amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पाड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हैं आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया
1: वाह वाह
0: उनको भी शायद
1: प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर
0: हाँ
1: सुनाया करती
0: गाती थी हाँ।
1: और अपनी लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया, अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या।
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: ये गाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शॉर्ट
1: हाँ, हाँ।
0: वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए। ए प्रेमिला बेन, नवो पिक्चर लो गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी।
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया। और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ
1: जी
0: बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: होगी,
0: जी,
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी, हाँ
1: होगी,
0: जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर
1: हाँ हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों
1: हाँ
0: के लिए,
1: हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी
1: जी
0: चाहता है, पे पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो
1: हाँ
0: लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी। उनके
1: अच्छा,
0: गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो ही गाने चाहिए लोगों
1: वाह वाह
0: को।
1: वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ जी,
1: करके।
0: हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो,
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: है वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
1: जी
0: मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि
1: करम,
0: आज आप यहाँ पधारी
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की,
1: जी
0: इतने अच्छे
1: जी
0: अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, और विविध
1: जी
0: भारती के तमाम सुनने वालों की ओर
1: जी
0: से
1: जी
0: हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरा फोन नंबर 98725-40118। किसी भी तरह की जे किसी वीर भरा भैन लोड़ है तो मैं संपर्क करके जानकारी लै सकता, भावें किसी के अपना सेहत बारे साइलेज बारे खाद आ जी खुराक है वो बारे जो कोई जानकारी लैनी चाहते जो मर्जी अपन शाम 6 बजे तो लैके 8 बजे तक कॉल करके उस संबंधी पूछ सकता
1: जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं ये जानकारियां साडे प्रोग्राम किसान वाणी दे विच साडे किसान भरावां दे नाल सांझियां कीतियां। साडे प्रोग्राम किसान वाणी दे लई समां देण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद वीर।
1: जिला श्री मुक्तसर साहब तो बब्बू उर्फ लाली होरां दे नाल कीतियां इन्हां गल्लां बातां दे नाल मैनू यानी कुलविंदर औलख नूं प्रोग्राम किसान वाणी दे विचों देओ आ गया। धन्यवाद।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम किसान वाणी दे तहत जिला श्री मुक्तसर साहिब दे सफल अते अगावधू पशु पालक किसान लाली उर्फ बब्बू नाल मुलाकात। विशा सी घरे ही पशुआं लई साइलेज तैयार करन दी विधि अते हरे चारे दे महत्व संबंधी गलबात कीती कुलविंदर सिंह औलख ने। किसान वीरों, हरे चारे की गल चल ही रही है तो PAU वालों जो सानू हरे चारे की मक्की की ढुकवी किस्म आ वह J1008 की सिफारिश की जाती है। J1008 मक्की दे पीले दाणिया वाली अगेती किस्म है जिसनू पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों विकसित किया गया है। पीले दाने होण करके इस विच बीटा कैरोटीन तत् की मात्रा दूजियां चारा किस्मां 1006 अते J1007 नालों ज्यादा हुंदियां ने। एक किस्म दे विच कंपोसिट किस्म होण करके इस किस्म दा बीज उत्पाद हाइब्रिड किस्मां नालों सस्ता अते किसान वीर इस किस्म दी बिजाई बीज आसानी दे नाल तैयार कर सकते ने। एक किस्म दा औसत झाड़ 403 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है। बिजाई की गल करते हैं तो मक्की J1008 दे 30 किलो बीज नू 30 सेंटीमीटर दिया कतारा विच बीजना चाहिए। बिजाई 4 मार्च दे पहले हफ्ते तो लैके 8 सितंबर तक की जा सकती है। फाल आर्मीवारम दे हमले तो बचण दे लई मक्की दी बिजाई अद अप्रैल तो अद अगस्त विचकार कर लेनी चाहीदी है। फसल दी बिजाई खाद बीज ड्रिल नाल भी कीती जा सकती है। मक्की दी बीज नू डेरोसन एग्रोजिसम 50 WP कार्बेडाजिम दवाई नाल सोध लेना चाहिए है। मक्की नू बिना बहाए 0 till drill नाल वाह के भी बिना बहाए बीजी कणक तो बाद भी बीजिया जा सकता है। आपा गल कर रहे हैं चारे वाली मक्की J1008 दी जिस दी सिफारिश PAU लुधियाना वालों की गई है। खादा अते नदीन नाशकों के लिए जो इस विच सानू हदायत दित्तियां गईयां ने, जेकर खेत तैयार करने समय 10 टन देसी रूड़ी की खाद पाई होवे तां मक्की नू जिंक फास्फोरस पोटाश तत् पाउण दी लोड़ नहीं है। नाइट्रोजन तत् दा 1/3 हिस्सा भी घट पाओ। दरमियानियां जमीनां दे विच बिजाई दे समय 40 किलो यूरिया 55 किलो DAP 20 किलो पोटाश पाउणी चाहीदी है अते 40 किलो यूरिया बिजाई तो 1 महीने बाद पाउणा चाहीदा है। नदीना दी रोकथाम दे लई 500 ग्राम एट्राजिन हल्कियां जमीनां दे विच ते 800 ग्राम एट्राजिन दरमियानियां तो भारियां जमीनां दे विच 200 लीटर पानी विच घोल के बिजाई तो 1-2 दिन बाद स्प्रे कर देनी चाहीदी है। सिंचाई दी गल करदे ने, गर्मी रुत दे चारे दी मक्की नू 4-5 पानियां दी जरूरत हुंदी है, जबकि सौनी रुत विच पानी बरसात दे हिसाब नाल लगाया जांदा। बरसात समय खेत विच खड़ा पानी खेत विचों बाहर कढ़ देना चाहीदा। इस सारे साल दे लई सानू मक्की दे खेत दी देखभाल दे लई हदायतां दित्तियां जा रहियां ने। कटाई अगेती कटाई करन

वाहिगुरु साडा गुरु मंत्र है ते गुरु मंत्र दे जाप दा हर सिख नू आदेश है। उस नू ता उठदियां बैठदियां किरत विरत करदियां वाहिगुरु नू चेते रखन दा आदेश है। सिमरन ता साडी रहत दा मुड है। अरदास विच जद असी आखदे हां सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे ता सिमरन दी परपक्ता केवल अपने लई नहीं सरबत खालसा जी लई पूरे बल नाल मंग रहे हुने आ। इतना ही नहीं इस तों अगे असी ए वी मंगदे हां कि हे वाहिगुरु दातार जी सेई प्यारे मेलने जिन्ना मिलिया वाहिगुरु नाम चित आवे। असी इस सिमरन दा केवल दान ही नहीं मंगदे वार वार वाहिगुरु वाहिगुरु आख के इस सिमरन दा अभ्यास भी करदे आ। इस पक्खों बोलो जी वाहिगुरु दा आवाजा केवल सिमरन रहत दी चेतावनी ही नहीं उसका अभ्यास भी है। अरदास करदियां असी अपने कौमी विरसे दियां अदुतियां प्राप्तियां नाल जुड़दे आं। हैरान हुंदे आं सिख सिदक दे सिरड उत्ते चक्रित हुंदे हां हठियां दे हठ उत्ते जपियां दे जप उत्ते तपियां दे तप उत्ते धर्म हेत सीस देन वालियां दी प्रेमा भक्ति उत्ते विस्माद विच आउंदे आं अपनी कौम दे कारनामियां नूं याद करके तद वाहिगुरु बोल के इस विस्माद दा ऐलान करदे आं। उस गुरु नूं वाह मरहबा कहंदे हां जिस दे प्रताप नाल साधारण जिंदगियां एडियां महान आत्मक सिखरां उत्ते जा अपणियां। पंज प्यारियां नूं याद करदे आं आत्म समर्पण दा भाव जागदा है। चौहान साहिबजादियां नूं याद करदे हां तां अलौकिक दृढ़ता दी प्रेरणा मिलदी है। 40 मुक्तियां नूं चेते करदे हां तां जी करदा है असी वी टुट्टी गंढवा सकीए। बंद बंद जुदा करवाण वालियां खोपरियां लहाण वालियां आरियां नाल तन चरवाण वालियां नूं याद करदे हां तां मन द्रव उठदा है। इउं जद असी इन्हां सभना दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके वाहिगुरु बोलदे हां तां इह बोल द्रवे होए मन दी पुकार बन के निकलदे ने कि असी वी ऐसियां महान प्राप्तियां वाली कौम दे सदस्यां कि इस कौम दे गौरव दे सांझीदार अखवाउण दा मान सानू वी प्राप्त है। इस विचार तों शुकराने दे भाव पैदा हुंदे ने। वाहिगुरु बोल के असी महिमा भरे शुकराने दा आवाजा दिंदे आं। इउं इन्हां बोलां राहीं इक्के वेले असी कई भावनावां दा प्रगटावा करदे आं। विस्माद दा महिमा दा शुकराने दा भगती दा द्रवे होए मन दा वाहिगुरु बोल के असी सुगंध भी खांदे आं बचन वधता दी अपने विरद दी पालना दी जिस दी पैज लई असी अरदास विच अर्ज गुजारदे आं। विरद की पैज रहे ए विरद की है संता मान्यो दूता डान्यो ए कुटवारी मेरी दी प्रतिज्ञा है। वाहिगुरु बोल इस प्रतिज्ञा दा शब्द है। इस विच खालसे दा बोल बाला है। वाहिगुरु नूं पुकार के असी अपने अरदास विच उसदी बख्शिश नूं आमंत्रित भी करदे आं। उसदी मेहरामत नूं अपनियां लोड़ां उपर बरसन दा सद्दा भी दिंदे आं। उसदी नजर नूं साडे सिदक उपर छाए रहन दी पुकार भी करदे आं। वाहिगुरु बोल के असी केवल अपना ध्यान ही अपने वाहिगुरु वल नहीं मोड़दे वाहिगुरु जी दे ध्यान नूं भी अपनी अरदास वल प्रेरदे आं। वाहिगुरु दा आवाजा अरदास करन वालियां विच आत्मक एकता दे भाव भी जगाउंदा है। इस बोल नाल अरदास करता ते अरदास दे स्रोतियां विचाले आत्मक संबंध मौलदा है। इकले इकले सिख ते समुची संगत विचाले भी एक प्राण धारी एकता जागदी है। जो जो प्राणी उच्ची आवाज नाल इन्हां बोलां दा हुंगारा भरदा है अपनी आत्मा नूं सारी संगत दी एकागर होई आत्मा विच वलीन करदा है। इउं ओह एक अलौकिक आत्मक एकता दा हुलारा मानदा है। बोलो जी वाहिगुरु दे बोल इस नाते बड़े महत्व वाले बोल हन। अरदास दे हर स्रोते साधक लई बन आउंदा है कि ओह

हर वार इस आवाजे दा सिदक नाल हुंगारा भरे। अरदासिये वल्लों वाहिगुरु बोलन दा आमंत्रण सुन के भी जो चुप करके रहंदे हन ओ अपना धर्म नहीं निभा रहे हुंदे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुन तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा नाल संबंधित जीव विज्ञान पेपर लीक मामले च एक मुख मुलजम नूं गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके से केंद्रीय सेहत मंत्री JP नड्डा ने नागरिकां नूं डेंगू की रोकथाम बारे जागरूकता वधाउण ते सुरक्षित वातावरण यकीनी बनाउण लई एकजुट होण दा सद्दा दित्ता। तरन तारण पुलिस ने गुरदासपुर च SDM अनुप्रीत कौर रंधावा नूं भ्रिष्टाचार के मामले च कीता गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने लुधियाणा ते होरना थावां तों 132 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार करदिआं उत्तरी भारत के हुण तक के सब तों वड्डे साइबर धोखाधड़ी सिंडीकेट का पर्दाफाश किया। खेती विरासत मिशन वल्लों पराली संभाल ते वातावरण सुरक्षा लई 10 रोजा पराली संभाल चेतना यात्रा की शुरुआत अते मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा च कई थावां ते 22 जून तक गर्मी पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आज नीट यूजी 2026 की परीक्षा नाल संबंधित जीव विज्ञान पेपर लीक मामले में एक मुख मुलजम नूं गिरफ्तार किया। मुलजम मनीषा गुरुनाथ मंथारे पुणे महाराष्ट्र तों एक सीनियर बॉटनी अध्यापक ने अते उस नूं राष्ट्रीय जांच एजेंसी वल्लों एक माहर वजों नियुक्त किया गया सी। जांच एजेंसी ने कहा है कि मुलजम कोल बॉटनी ते जूलॉजी प्रश्न पत्रां तक पूरी पहुंच सी। CBI ने कहा है कि उसने 14 मई नूं गिरफ्तार की गई मनीषा राही संभावी नीट उम्मीदवारां नूं इकट्ठा किया अते पुणे च उस रिहायश के इन विद्यार्थियों लिए विशेष कोचिंग क्लासा लगाईया। इस मामले हुण तक 9 मुलजमान नूं दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे अते अहिल्यानगर तो गिरफ्तार किया गया। इन्हां विचों 5 मुलजमान नूं पहला ही अदालत विच पेश किया जा चुका है अते उन्हां नूं पुछगिछ लई 7 दिनां लई पुलिस हिरासत ते रिमांड ते लिया गया। पिछले 24 घंटे विच CBI ने देश भर में 6 थावां ते छापेमारी की है ते कई अपराधक दस्तावेज लैपटॉप बैंक स्टेटमेंट ते मोबाइल फोन जब्त किए ने। उधर केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए नतीजा ऐलान दीआं सहूलतां दी रूपरेखा देने वाला एक नोटिस जारी किया है जो एक निरपक्ष अते पारदर्शी मुलांकण प्रक्रिया प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करता है। नोटिस विच बोर्ड ने कहा है कि अपने नतीजों तों असंतुष्ट विद्यार्थी 2 गेट की समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। कौमी डेंगू दिवस के मौके से केंद्रीय सेहत मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों को डेंगू की रोकथाम बारे जागरूकता वधाउण ते साफ ते सुरक्षित वातावरण यकीनी बनाउण लई एकजुट होण दा सद्दा दित्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी व्यापक जांच इलाज सहूलतां ते जागरूकता मुहिम राही डेंगू की रोकथाम के उपरालों नूं मजबूत करना जारी रख रही है। इस साल के थीम डेंगू की रोकथाम लई भाईचारक भागीदारी जांच करो साफ करो अते ढाके रखो बारे जानकारी दिंदिआं श्री नड्डा ने डेंगू खिलाफ लड़ाई च सरगर्म भाईचारक भागीदारी की महत्ता ते जोर दिता। इस दौरान पंजाब भर में भी वख-वख थावां ते लोगों नूं इस बारे जागरूक किया गया। जिला मोहाली दे सेहत विभाग वल्लों डेंगू खिलाफ जागरूकता रैली कढ़ी गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर गिरीश डोगरा ने रैली नूं फेज 3B1 ते सरकारी स्कूल तों रवाना किया जिस विच सेहत विभाग के कामियां ते नर्सिंग कॉलेजां दे विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। रैली दौरान लोगों नूं डेंगू दे लक्षण कारण बचाव ते इलाज संबंधी पैंफलेट वंडे गए। रैली दौरान डॉक्टर अनामिका सोनी ने कहा कि इसका मकसद लोगों की इस मारू बुखार बाबत जागरूकता वधाउणा है। इस दौरान राष्ट्रीय डेंगू दिवस मौके पंजाब सेहत विभाग के सेवामुक्त डायरेक्टर डॉक्टर आदर्शपाल कौर ने लोगों नूं अपील करदिआं आख्या
1: आने वाले समय विच बरसातां होणगीआं बारिश का पानी खड़ा होएगा जिवें कि तुहानूं पता ही है कि साफ पानी विच डेंगू का मच्छर पनपदा है ते इह दिन

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निक्के निक्के तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक वक जमाता दे विद्यार्थियां नाल रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम निक्के निक्के तारे।
1: लाडा आया, आमा आया, सामने काला बादल आया, पानी लाया, बारिश लाया, खूब टमाटर दल बरसाया, नाना बीगा, ताता बीगा, तंबी सारा दबसाला बीगा, वादा बताया, नाता गया, सामने खेल को मताया।
2: जोरदार तारियां भाई।
0: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मंदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे दा ए विशेष अंक।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
5: पेश है सबका फेवरेट
6: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिती 17 मई दिन एतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नू शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।

0: पैगामों में भी कितना प्यार छुपा होता है। हर लफ्ज में दिल का एहसास बसा होता है। यूं ही नहीं लोग याद करते हैं किसी को, हर रिश्ते में कोई खास रिश्ता छुपा होता है। जी हाँ श्रोतियों, बिल्कुल रिश्तियां दे विच खास रिश्ता आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे श्रोतियां दा साडे नाल, ते बिल्कुल जी उसे ही रिश्ते नूं निभाउण दी इस कड़ी दे विच प्रोग्राम पैगाम लैके इस रविवार मिती 12 मई सवेरे 7 बजे सजरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे अपने पैगामां नूं।
1: यूं ना कभी करना इंतजार।
0: पैगाम पेश करनगे सीमा मेहरा। सो तुसी पैगाम भेज सकते हो 7173 73 146 ते।
2: मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार।
0: प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। और सुनना ना भूलना, मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर के तहत हफ्ता भरी सिलसिला पैगाम।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: प्रोग्राम शाम सुहानी सुनने वाले तमाम स्रोतियों नूं बलविंदर वाघा वल्लों प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड ईवनिंग। दोस्तों, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? मैनूं पूरा यकीन है कि साडे सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होणगे, चढ़दी कला च होणगे। अज प्रोग्राम शाम सुहानी दे विच तुहाडे लई लैके आए हां सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जिस तहत तुहानूं सुणवा रहे हां फिल्म तुम बिन ते आधारित ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਮੀ ਅਫਸਾਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ।

0: नमस्कार श्रोतियो, अज दा प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने लेके हाजिर हां जी। मैं खुशप्रीत शेरगिल, ते अज असी गल करांगे एक अजेही फिल्म दी जिस विच प्यार दी भी गल कीती गई है, जुदाई दी भी गल कीती गई है। ते इस फिल्म दे गीत संगीत ने भी बहुत वाह वाह खट्टी सी। ते अज दी साडी फिल्म दा नाम है तुम बिन।
1: अरे फोन क्यों काटिया, इतनी रोमांटिक कविता लिखी है, अब सुनो। हंसना नहीं है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आ जाओ ये दिल कह रहा है, फिर शाम में तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जा निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है।
0: इस फिल्म दे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा सन, ते इस फिल्म नू अनुभव सिन्हा द्वारा ही लिखा गया सी। ते इस फिल्म ते प्रोड्यूसर सन भूषण कुमार ते कृष्ण कुमार। जदों उन्हां नूं इह कहानी सुनाई गई तां पहली सट्टे ही कहानी पसंद आ गई, ते उन्हां दे मन विच कहानी सुनदियां ही अनुभव सिन्हा दा नाम बतौर डायरेक्टर गूंजिया। उस समय अनुभव सिन्हा म्यूजिक वीडियो निर्देशित करदे सन। टी सीरीज दे प्रबंधक चाहुंदे सन कि उह इह फिल्म डायरेक्ट करन। ते इस तरह एह खूबसूरत रोमांटिक ते जुदाई ते फेर मिलन नूं दर्शाउंदी हुई फिल्म निर्देशित करन दा मौका अनुभव सिन्हा नूं मिल गया।

0: दिल नू तू पौन वाली गजल दा आनंद तुसी माण लिया स्रोतियो। ते हुण गल करदे आं फिल्म तुम बिन दी कहानी दी। ते फिल्म दी कहानी कुछ इस प्रकार है।
1: भारत विच अमर शाह दी दुर्घटना विच मौत तों बाद कैनेडा स्थित शाह इंडस्ट्रीज ढैण दे कंडे ते है। अमर दी मंगेतर ते शाह इंडस्ट्रीज दी मैनेजिंग डायरेक्टर पिया शाह बहुत दुखी है। गिरधारी उसका पिता सदमे विच है ते दूजियां प्रति गैर जवाबदेह है, जदों के अमर दी भैण ते दादी सोग विच हन। इंस्पैक्टर डी मैलो जो कि मामले दी जांच कर रहा है, अपने उच्च अधिकारियां दे मामले प्रति उदासीनता दे बावजूद हादसे लई जिम्मेवार व्यक्ति नूं लब्भण लई दृढ़ है। अमर दी मौत तों कुछ महीनियां बाद शेखर मल्होत्रा नाम दा एक बहुत ही सत्कारित ते प्रतिभाशाली कारोबारी बिना किसी मुआवजे दे शाह इंडस्ट्रीज नूं दोबारा बनाउण ते बहाल करन दी पेशकश करदा है।
2: जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं साथ देने आया हूं।
1: ए कहंदे होए कि अमर उस नूं भारत विच मिलिया सी अते उस दी मौत तों पहलां उस नूं नौकरी दी पेशकश कीती सी। उस नूं मौका दित्ता जांदा है ते ओह कंपनी नूं दोबारा व्यवहारिक बनाउण दे औखे कम नूं पूरा करदा है।

0: पैगामों में भी कितना प्यार छुपा होता है। हर लफ्ज में दिल का एहसास बसा होता है। यूं ही नहीं लोग याद करते हैं किसी को, हर रिश्ते में कोई खास रिश्ता छुपा होता है। जी हाँ श्रोतियों, बिल्कुल रिश्तियां दे विच खास रिश्ता आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे श्रोतियां दा साडे नाल। ते बिल्कुल जी ओसे ही रिश्ते नूं निभाउण दी इस कड़ी दे विच प्रोग्राम पैगाम लैके इस रविवार मिती 12 मई सवेरे 7 बजे सर्जरी सवेर दे तहत तुसीं सुनोगे अपने पैगामां नूं।
1: यूं ना कभी करना इंतजार।
0: पैगाम पेश करनगे सीमा मेहरा। सो तुसी पैगाम भेज सकते हो 7173-7146 ते।
2: मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार।
0: प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी। और सुनना ना भूलना, मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर के तहत हफ्ता भरी सिलसिला पैगाम।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिती 17 मई दिन ऐतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।

0: अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
1: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। प्रोग्राम निके निके तारे विच इस बार 17 मई दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो वक वक जमाता दे विद्यार्थियां नाल रिकॉर्ड कीता गया प्रोग्राम निके निके तारे।
2: लाडा आया आमा आया सामने काला बादल आया पानी लाया बारिश लाया खूब टमाटर दल बरसाया नाना बीगा ताता बीगा तन भी सारा दबसाला बीगा वादा बताया नाता गया सामने खेल को मताया।
3: जोरदार तारियां भाई।
1: इस प्रोग्राम के मेजबान ते निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 17 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निके निके तारे दा ए विशेष अंक।

0: جان نثار اختر صاحب کی غزل پیش کر.
1: اشعار میرے

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में

0: स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु

0: नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया। hey,

0: बेटा सेल्फी ले ले रे।
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

0: सबके मन मलावर भैया, तनी नाची गाई सबके मन मलावर भैया, तनी नाची गाई सबके मन मलावर भैया।
1: साल 2012 चल रहा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान, और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

उनमें से एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: विरह मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मैं।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

अंतराल के बाद छाए गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त।

जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हम

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।
2: ते